श्रीमन्नभीष्टभटाखिलोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेक दयैक सिन्धो श्रीदेवताग्रहभुजान्तर

श्रीनिवास जगदेकसिंहो श्रीदेवताग्रहभुजान्तरदिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीस्वामिपुष्करनिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोद्धिनो हर

श्रिताय निरवध्य गुणाय तुभ्यं शांकिंकरो वृषगिरीश न जातु मह्यम् श्रीषट्क्रिया घटिकया पदुपाय भागे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेयतया स्फुरन्त्या नित्याश्रिताय निरवध्य गुणाय